हेलो, आई एम फ्रॉम जैसलमेर इन ए स्मॉल विलेज कॉल्ड डेडा इन थार डेजर्ट एंड यू आर लिसनिंग फ्री रेडियो साउथ समाकुट।